परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM टू 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM टू 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 8 5 6 3 9 7 0 3 0 1 3 0 1 दर्शन सिंह खक के नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो।

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 and 856-397-0301 तुहाडे अपने होस्ट ते दोस्त दर्शन सिंह खक दे नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते।
1: दोस्तो सत श्री अकाल नमस्ते अदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज। एक्चुअली ए प्रोग्राम 7 तो लैके 9 बजे तक हुंदा, टाइम चेंज हो गया सी, रिकॉर्डिंग थोड़ी जी 6 बजे आई है। सो बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। लो कुछ गीत सुनदे हैं जी। पहला गीत आपां सुनदे हैं, बहुत प्यारा जिहा गीत है हिम्मत संधू दा ते बाजी दिल दी, ते फिर आपां अगले गीत दे नाल चालू करांगे जी।

इसी के साथ लगी हुई है सामने, वो फ्री है कि कोई बात नहीं, फैलना है तो फैल जाए, जितना भी एब्डोमेन फैल सकता है वो फैल जाए। तो ये ऐसा हम लोगों ने आप सब लोगों को बता दिया था कि वो 12 की 12 पसलियां साइड दाएं साइड बाएं साइड इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और नीचे की दो नहीं जुड़ी हुई है। फिर हमने ये कहा था कि इनके जोड़ जुड़ने का पोस्टल कार्टिलेज इन पसलियों को एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस में रखने के लिए हम लोग कुदरत ने और मांसपेशियां लगाई हुई हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। इंटर मीन्स बीच में, कॉस्टल मीन्स रिब्स मसल। पसलियों के बीच बीच में जो मांसपेशी है जो इन पसलियों को अपनी जगह पर रखती है उसको इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। इसी तरह ही जहां जहां इनका ज्वाइंट होता है, सामने ज्वाइंट है स्टर्नम के साथ, पीछे ज्वाइंट है रीढ़ की हड्डी के साथ, उसके लिए स्पेशल कार्टिलेज है और वो कार्टिलेज जो है इसको वहां वहां पर बांधा रखता है। तो मैंने इसे आपको ये डिस्क्रिप्शन दे दी कि ये जो चेस्ट है इसकी हम आज बात करने लगे। अब इसके एंटर हम करेंगे कि चेस्ट के बारे में ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है, ये चेस्ट से गुजर के जा रहा है और उस चीज को वो चेस्ट के मिडल से गुजरता है जिसका नाम हमने रख लिया है मिडियास्टाइनम। मिड का मतलब आधा उधर बीच में हो गया ना, तो इसी तरह मिडियास्टाइनम स्टर्नम के पीछे बिल्कुल सेंटर में, छाती के सेंटर में एक ऐसा कॉरिडोर है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा बाईपास है जिससे ऊपर की चीजें नीचे आ रही हैं और नीचे की चीजें ऊपर सिर को जा रही हैं, उसको कॉरिडोर हमने बोल दिया या मिडियास्टाइनम बोल दिया। अब मिडियास्टाइनम में बहुत सारे कंटेंट्स हैं, जिसमें हमने कहा था कि नाक से एक नाली शुरू होती है जो फेफड़ों तक जाती है और उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, लेकिन लैरिंग्स एक जगह आकर गर्दन में आकर रुक गई और दूसरी तरफ उसके आगे मुंह की बात आई थी, तो मुंह से एक नाली शुरू होती है जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं और वो जो फेरिंग्स है वो भी एक जगह आकर रुक गई जहां पर आके सांस वाली नाली खुराक वाली नाली आकर रुक गई है, उसको हमने बोल दिया एपिग्लोटिस, एक जंक्शन का नाम रख दिया हमने एपिग्लोटिस। वहां पर आके इनका आपस में राउट चेंज हो जाता है, रास्ता चेंज हो जाता है, शाह वाली नाली शाह की नाली आगे आ जाती है, खुराक वाली नाली पीछे आ जाती है क्योंकि उसको तो आगे नीचे और जाना है, स्टोमक की तरफ जाना है, और इसी तरह ही सांस वाली नाली आगे आ जाती है। लेकिन एक और तब्दीली यहां पर होती क्या है, उसकी दूसरी तब्दीली ये है कि इस एपिग्लोटिस से नीचे का जो पोर्शन खुराक का है उसका नाम हमने बदल दिया, इसको ईसोफेगस कह दिया, और सांस वाली नाली जो इस एपिग्लोटिस से आगे फेफड़ों की तरफ जा रही है उसका नाम हमने बदल दिया, उसको ब्रोंकस कह दिया। और अब ब्रोंकस तो दो हो गई क्योंकि दो फेफड़े हैं, ईसोफेगस एक ही स्टोमक में जा रही है वो एक ही रही, फेरिंग्स से ईसोफेगस हो गया, लैरिंग से ब्रोंकस हो गया, लेकिन ब्रोंकस दो हो गई इसी जंक्शन से, और एक राइट फेफड़े को दाहिने फेफड़े को जा रही है, एक बाएं फेफड़े को जा रही है और सांस पूरा हमारा उसी तरह चल रहा है। अब बात क्या है, अब ये जो जंक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुराक के लिए भी है, सांस के लिए भी, खुराक के बिना तो हम कुछ देर रह सकेंगे लेकिन हवा के बिना तो नहीं रह सकेंगे ना, हमारी लिमिट 3 से 5 मिनट तक की है मैक्सिमम, इसलिए ये बड़ा जरूरी कार्रवाई जरूर रास्ता है। जैसे अब लड़ाई चली ना, चीमा साहब बातें बता रहे थे, अब तेल का आदान प्रदान वहां से होना है और जिस दरिया के उस लिंक से समुन्द्र के लिंक से होना है, अगर वो ही नहीं खुला होगा, वो ही किसी कंट्रोल में होगा तो उसकी मर्जी है, आने दे मर्जी है ना जाने दे, और अगर इसमें कोई नुक्स हो गया तो कितने देश प्रभावित होंगे, पूरा देश ही दुनिया ही प्रभावित हो जाएगी उससे, है जी। सो इसलिए हर्मस उसको बोलते हैं, तो इसके लिए ये इतना ही इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, और इस एपिग्लोटिस की रक्षा करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, इसके ऊपर गिलाफ एक तरह दिया कुदरत ने, वो स्प्रिंग जैसा है।

0: को हम ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया का ऐसा गिलाफ है जो इसके ऊपर स्प्रिंग की तरह बना हुआ है, इसके अंदर मांसपेशियां है, मैं जैसे पसलियां एक दूसरे के बजी हुई है ना, और उनको बीच बीच में जो उसको मांसपेशी है इंटरकॉस्टल मसल जिसका नाम मैंने लिया, इसी तरह ही ट्रेकिया को भी स्प्रिंग टाइप कार्टिलेज सब्सटेंस है जो इसको बोलता है बांधता है। और ये ट्रेकिया जो है खास तौर पे इस जंक्शन को और इस जंक्शन के साथ ही ऊपर से आ रही है सुपीरियर वेना कावा, वो नाली जो ब्रेन का इस्तेमाल किया हुआ खून वापस लेकर दिल को जा रही है, और कार बज रुक जाए तो क्या होगा। इसी तरह ही हार्ट से निकलकर जो नालियां ब्रेन को खून सप्लाई कर रही हैं कि भाई लो खुराक भी लो ऑक्सीजन भी लो तो ब्रेन काम करे, वो दो नालियां हैं कैरोटिड आर्टरीज। तो वो कैरोटिड आर्टरीज भी यहां से होकर गुजर रही हैं, गर्दन से ही निकल रही हैं, और इसको उसने कवर कर दिया है। तो मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं कि ये पूरी चीजों की एंट्री नीचे जा रही है चेस्ट में, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। और ये जो ईसोफेगस की मैंने बात की कि बाकी तो भाई बोरेंस ब्रोंकस आई तो दोनों फेफड़ों में चली गई, और ऊपर से जो खून की नाली आई वो हार्ट तक रह गई, वो चेस्ट तक उनका लिमिटेड। लेकिन ईसोफेगस तो छाती को पार करके नीचे जा रहा है, और दूसरी वो नाली जो नीचे पूरे शरीर को खून की खुराक की ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी, जिसको हमने एओर्टा बोला था और जगह जगह उसके नाम बदल दिए थे। पहले जब हार्ट से वो शुरू हुई थी उसका नाम था असेंडिंग एओर्टा, उसके बाद फिर आर्च ऑफ एओर्टा वो घूम गई, घूम के पीछे की तरफ चली गई और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नीचे जाने लगी, निकली तो यहीं से ना, और उसको हमने आर्च ऑफ एओर्टा बोल दिया था। और फिर छाती में रही तो उसका नाम थोरेसिक डिसेंडिंग एओर्टा, थोरक्स में है ना लेकिन है डिसेंडिंग, नीचे को जा रही है, थोरेसिक डिसेंडिंग एओर्टा नाम रख दिया। और जैसे ही वो डायाफ्राम, वो एक मेम्ब्रेन है जो छाती और पेट को सेपरेट करता है आपस में, उससे गुजरकर नीचे गई तो उसका नाम हो गया डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा। आगे फिर चलेंगे इसकी बात के लिए, हम छाती तक रुक जाते हैं। तो इसी तरह ही ये जो है हमारा एओर्टा खून सप्लाई करने वाली नाली, ये भी नीचे जा रही है, ईसोफेगस भी नीचे जा रही है, और ये इनको हम फ्रेनिक ओपनिंग बोलते हैं। फ्रेनिक इस डायफ्राम का दूसरा नाम है, और फ्रेनिक नर्व भी है जो इसको सप्लाई करती है, उसका भी आगे मेरवा आएगा तो हम बताएंगे ऐसा लोगों को फ्रेनिक नर्व क्या है कैसे करती है। मैं सिर्फ छाती तक लिमिटेड हूं कि छाती से पेट में जाने तक बहुत सी चीजें हैं, नर्वस सिस्टम है, ईसोफेगस इंपॉर्टेंट तौर पे है, ये जो खून नीचे लेके जाने वाली नाली है एओर्टा जिसका नाम बोला वो है, उसके बाद नीचे से ऊपर को खून लाने वाली उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। जैसे मैंने ऊपर कहा सुपीरियर वेना केवा जो ब्रेन का खून नीचे लेकर आई, जो नीचे से ऊपर खून लेकर जा रही है उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा, वो भी तो यहीं से गुजरेगी। तो तकरीबन 7 डिफरेंट इम्पॉर्टेंट ओपनिंग है इस डायफ्राम में, ये जो बॉर्डर बना हुआ है ना चेस्ट का और अब्डोमेन का, 7 डिफरेंट ओपनिंग है इसमें जो ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर आने जाने के लिए। लेकिन ये निकलते कहाँ है, जिसको हमने मिडियास्टाइनम बोला, जो छाती का सेंट्रल भाग है, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिनका भी मैंने आपके सामने नाम दिया, ये सब चेस्ट के बीचों बीच ऊपर से नीचे तक निकलते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं कुछ नीचे जाते हैं, ताकि आदान प्रदान होता रहता है, आवाजाही होती रहती है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए इसकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर कोई नुक्स हो गया तो ये जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर इसमें कुछ चीज में कोई नुक्स हो गया, तब कितनी चीजें हैं कि कैसे पता चले कि इसोफेगस में नुक्स हो गया है या पैरिक्स में नुक्स हो गया है या ब्रोंकस में नुक्स हो गया है या एओटा में नुक्स हो गया है या वेना केवा में नुक्स हो गया है, इतनी जो चीजें हैं ये बात मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि भाई अगर इनमें से किस चीज में भी नुक्स हो जाता है तो आपको कैसे पता चले बाहर। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तब तो जाएंगे ही जाएंगे, हम आपको वो जो क्लिनिकल डायग्नोसिस की बातें हैं वो बताएंगे। उसके बाद अगली बात इस छाती के बारे में पूरी हम कर लें तो फिर हम बताएंगे निशानियां क्या है। जब छाती को हमने सेंट्रलाइज एरिया जिसको हमने मिडियास्टाइनम कहा था उसमें बांट दिया, जिसका मतलब क्या हुआ, एक दाहिने साइड हिस्सा रह गया एक बाएं साइड हिस्सा रह गया, और दाहिने और बाएं साइड को जो हिस्सा रह गया उन दोनों चीजों को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरा एक इस तरह का मेम्ब्रेन है जो हमारे फेफड़ों के ऊपर कवर किया हुआ है। मैंने कई बार ये बात बताई कि बहुत सारे अंगों के ऊपर कुदरत ने एक इस तरह का गिलाफ चढ़ाया हुआ है, और क्योंकि हर अंग अपनी मूवमेंट में है, किसी की ज्यादा मूवमेंट है किसी की कम मूवमेंट है, किसी ज्यादा है किसी के कम है, और वो जो मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, उसके मुताबिक उसको फैलना होता है सुकड़ना होता है, फैलना होता है सुकड़ना होता है, और ये फैले सुकड़े इसकी बाहर की बाउंड्री को कोई हर्ज ना हो, इसकी बाउंड्री को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हरेक अंग के ऊपर कुदरत ने एक ऐसा गिलाफ चढ़ाया है, और उस गिलाफ का जो फेफड़ों के ऊपर चढ़ा हुआ है उसका नाम है प्लूरा, और दाहिने साइड भी फेफड़ा है बाएं साइड भी फेफड़ा है, इसलिए एक राइट प्लूरा हो जाएगा एक लेफ्ट प्लूरा हो जाएगा। ये जो प्लूरा है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, और ये जितने भी जैसे हम बोलते हैं कि भाई दो लोब है बाईं तरफ तीन लोब है दाईं तरफ, और इन लोब्स के अंदर तक भी ये जाता है और उसको अलग अलग सेपरेट दोनों को तीनों को या दोनों को करता है, और ये इसकी खासियत है कि उनके फैलने या सुकड़ने में इसको फैसिलिटेट करता है। इसके जितने भी कवरिंग्स हैं जैसे हार्ट के ऊपर कवरिंग है पेरिकार्डियम उसको बोलते हैं, और अब्डोमन के ऊपर जो स्किन के नीचे का जो आंतरियों के ऊपर है उसको पेरिटोनियम बोलते हैं, वो सभी कवरिंग जितने भी है ना ये पूरे डबल लेयर कवर्ड है, और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा फ्लूइड कुदरत ने रख दिया है ताकि अगर ये फैले या सुकड़े अंदर के अंग और उनको फैसिलिटी उतनी मिल जाए। तो मैं बात कर रहा हूं चेस्ट की, ये जो चेस्ट है ना इसके प्लूरा के दो हिस्से हो गए, और इस प्लूरा के जो दो हिस्से एक प्लूरा को हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, जो अंदर वाला लेयर है उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, जो बाहर रह जाता है उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, बाहर वाला जो है पसलियों के अंदर अंदर तक लगा होता है, अंदर वाला जो है वो फेफड़ों के साथ साथ चिपका होता है, फेफड़े फैलते हैं वो भी फैल जाता है, फेफड़े सुकड़ते हैं वो भी सुकड़ जाता है, और इसके अंदर का जो फ्लूड है वो इसको फैसिलिटेट करता है फैलने के लिए। इस तरह दो बैग हो गए जिन दोनों बैग में हमारे दो फेफड़े रहते हैं, और उसके बाद इन दोनों फेफड़ों के बीच में हमने मिडियास्टाइनम बनाया था, मिडियास्टाइनम के अंदर ही लिपटा हुआ हमारा हार्ट भी है, हार्ट का बहुत सारा पोर्शन भी है, और हार्ट को आप सभी लोग ऐसे ही मोटे तौर पे जानते हैं कि भाई हार्ट तो छाती में खबे तरफ होता है बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ हम मानते हैं ठीक है ज्यादा बाईं तरफ होता है, उसकी जो सरफेस एनाटॉमी हम उसको बोलते हैं, मैंने बहुत बार यहाँ इन प्रोग्राम में बताया भी और आगे आने वाले समय में फिर दोबारा बताऊंगा समय समय के मुताबिक कि हार्ट अंदर है, लेकिन अब हम इतने काबिल हो गए हैं इस जानकारी में कि हम देख पाए कि इसके वाल्व कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ पर राइट वेंट्रिकल है कहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है, कहाँ पर राइट एट्रियम है कहाँ पर लेफ्ट एट्रियम आता है, छाती से ऊपर ही हम जान सकते हैं कौन सा वाल्व जो है वो कहाँ पर है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को जाने वाला जो वाल्व है वो कहाँ पर होगा, और अगर उसके अंदर कोई खराबी है तो हम छाती के ऊपर से कैसे जानेंगे, हम जान सकते हैं। इसी तरह ही वेंट्रिकल का जो और ऊपर वाला जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है उनमें से लगा हुआ जो वाल्व है वो उसको जानेंगे तो कैसे जानेंगे। तो हम छाती के ऊपर से ये चीजें जान सकते हैं कि भाई वो कहाँ पर है और वहां पर की आवाज जो है वो हमारे कानों में फिट है, हमारे ब्रेन में सेट है, और वो आवाज उस तरह की नहीं होगी तो हम कहेंगे ना इसके तो ट्राइकस्पिड वाल्व में नुक्स है, इसके तो बाइकस्पिड वाल्व में नुक्स है, या इसके लूनर वाल्व में है, सेमी लूनर वाल्व जो जैसे पल्मोनरी का होता है, इसी तरह ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाहर से ही। ये निशानियां मैं बताऊंगा आप सब लोगों को बताऊंगा, मैं सिर्फ हर चीज को इस तरह एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किसी को कोई ये ना रह जाए, मुझे तो समझ नहीं आया ये क्या कहा, ये ना रहे। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको इस तरह बताऊं कि आप सब लोग समझ जाएं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि छाती के अंदर दो फेफड़े हैं, बाईं तरफ के फेफड़े में दो लोब हैं और बाईं तरफ में ज्यादातर हिस्सा जो है हार्ट का होता है, और हार्ट की जो बाउंड्री है ना राइट साइड में बाउंड्री, वो जो हमारी सामने की स्टर्नम है ना, स्टर्नम की हड्डी से सेंटर से मिले, जैसे तहसीलदार आते हैं ना निशानदेही करने के लिए जमीनों की, तो जरीब होती है उनके पास, वो जरीब से वो पत्थर लगे होते हैं उसी वो नापना शुरू कर देते हैं, यहां से नापेंगे तो यहां तक ये भाई तुम्हारी है, यहां पर पत्थर लगा दो या निशान लगा दो कि ये तुम्हारी जमीन है, इसके इधर इसकी जमीन है, रौला हो जाता है कुछ कुछ, वो सेल सॉल्व कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि लेफ्ट साइड में हार्ट है लेकिन हार्ट का कुछ हिस्सा राइट साइड में भी है, और वो मैंने निशान दे करके आपको बता दी कि अगर स्टर्नम के सेंटर से हम मिनती शुरू करें तो स्टर्नम के सेंटर से 1.2 सेंटीमीटर सेंटर से राइट साइड को हार्ट की बाउंड्री है, उसका एरिया वहां तक है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं इसके मुताबिक कि अगर इस एरिया तक में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो हार्ट की हम निशानियां आपको बताएंगे तो फिर आप अंदाजा लगा लेंगे कि हार्ट में है, ऐसा ही नहीं कहेंगे कि हार्ट ये जो फेफड़ों में ही है, नहीं, फेफड़ों और हार्ट की जितने भी चेंजेस हैं आप इसमें वो आप अलग अंदाजा लगा सकेंगे कि नहीं ये तो फेफड़ों में हार्ट में नहीं है, होगी आपको निशानियां पता होगी। इस हिसाब से ये जो चेस्ट के अंदर का जितना भी सिस्टम सेट किया हुआ है वो कॉम्पैक्ट टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का स्ट्रक्चर है इसमें, और इन सभी में हर एक की अपनी बाउंड्री है, और जब भी किसी में कोई खराबी आएगी उसकी अपनी रफ्तार में उसके अपने चलन में रुकावट आ जाएगी, और वो जो रुकावट आएगी आस पड़ोस को तकलीफ देगी, आस पड़ोस का चलन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तकलीफ अगर हार्ट में हुई या तकलीफ मिडियास्टाइनम के किसी और ईसोफेगस में हो गई तो इसका मतलब ये है कि इसका इफेक्ट साथ वालों को भी होगा, इसका इफेक्ट ऊपर भी होगा, इसका इफेक्ट नीचे भी हो सकता है। तो ये सब चीजें कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे हम जाने कि भाई ये ईसोफेगस में है या हार्ट में नुक्स आ गया है, या एवेना केवा का नुक्स है, या एओटा का नुक्स है, ये सब चीजें हम आपको इन्हीं प्रोग्रामों में बताएंगे कि इसमें नुक्स हो तो आप क्या कैसा समझेंगे, बाहर की कौन कौन सी निशानियां आपके सामने आ जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में मैंने आपके सामने ये स्पष्ट कर दिया कि चेस्ट है क्या, कौन कौन सी हड्डियों से बनी है ये, वो हड्डियां कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे अपनी पूरी दूरी में एक दूसरे के साथ बची रहती हैं और एक केज बना देती है, पिंजरा बना देती हैं, और उस पिंजरे में कौन कौन सी चीजें रहती हैं, और उसका नाम मैंने मीडियास्टाइनम बोल दिया, मीडियास्टाइनम उसके बाद ईसोफेगस बोल दिया, उसके बाद हमने ये जो मेम्ब्रेन था डायफ्राम का उसकी बात हमने कर दी, उसके बाद हमने ट्रेकिया की बात कर दी कि उससे नीचे ब्रोंकस जा रही है, उसके नीचे जो है ईसोफेगस जा रहा है, ये सब बातें यहां से निकली। एक बात जो आज के इस प्रोग्राम में अभी हार्ट की मैंने बात की है, लंग्स की मैंने बात की है, हार्ट और लंग्स जो है वो अपने अपने दायरे में कवर्ड है, उनको बाउंड्री दे दी कुदरत ने कि भैया पेरिकार्डियम के अंदर अंदर ही तुमको रहना है, ये फेफड़े हैं ये इसके अंदर अंदर ही तुमको रहना है। लेकिन जैसे ही फेफड़ों में कंजेशन हो गया, निमोनिया हो गया, फिर जैसे ही हार्ट में कोई नुक्स हो गया, कोई वाल्व काम नहीं कर रहा है, कोई जो जो उसकी आर्टरीज हैं उनमें कोई कोरोनरी आर्टरी में कोई डिफेक्ट आ गया है, तो वो साइन एंड सिम्टम पैदा करेगा। जैसे वो मैंने रोड़ी वाली बात शुरुआत में कही थी कि आप कंकर फेंक दें पानी में, जैसे ही आप उसमें कंकर फेंक देंगे लहरें निकलेंगी, ठीक उसी तरह ही हार्ट में अगर कोई चेंजेस आएगी तो किस तरह की लहरें होंगी हार्ट में या फेफड़ों में, अगर कोई तब्दीली आ रही है तो किस तरह की चेंजेस होंगी जो बाहर आप महसूस कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस है, लोबर निमोनिया है, इस तरह की अलग अलग नाम है बीमारियों के, और उनमें अलग अलग तरह की चीजें आपके सामने आएंगी कि भाई क्या क्या निशानी। तो पहले हम जनरल निशानियों की बात करेंगे, अगर फेफड़े में नुक्स हुआ तो बाहर क्या देखेंगे, हार्ट में नुक्स हुआ तो बाहर क्या देखेंगे, मीडियास्टाइनम के किसी कंटेंट में कोई ऐसा नुक्स हुआ तो फिर बाहर आप क्या देखेंगे। ये चीजें मैंने आप सब लोगों को आगे इन प्रोग्रामों में बतानी है, और आज का ये चैप्टर मैं समझता हूँ मैं आगे ना करूँ। हाँ, एक बात रहेगी, एक बात रहेगी, वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बारे में पहले भी बात हुई होगी क्योंकि तो बड़े लंबा समा हो गया बोलते हुए मुझे। अब मैं फिर बता रहा हूँ कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, अरे भैया काहे फिरता फूलिया फूलिया, जब 10 मास उर्द मुख रहता शोधन कैसे भूलिया बड़ा, तो एक को वो बातें भूल गई हैं। जब माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ तब तेरी रक्षा कौन कर रहा था। हाँ जी, लेकिन मैं जो मेडिकल व्यू पॉइंट दे रहा हूँ आपको, मेडिकल व्यू पॉइंट ये है कि शरीर में अपनी एक इम्यूनिटी है, बच्चा पैदा हो जाता है माँ से तो अलग हो गया ना, कौन सी ऐसी इम्यूनिटी है जो उसको बचा के रखती है, अलग अलग विंग है, सेक्शन है प्रोटेक्शन के लिए। तो उस वक्त कुदरत ने जैसे ही स्पर्म एंड ओवम आपस में मिले, जैसे ही फीटस की डेवलपमेंट हुई, जैसे ही वो डेवलप करना शुरू हुआ, कुदरत ने कहा कि भाई अब तेरी खुराक तो तेरे को माँ दे देगी, माँ की तरफ से कुछ ऐसा भी आ सकता है जो तेरे को नुकसान दे दे, और उसको बचाने के लिए भी ये हम तेरे को एक ग्लैंड दे रहे हैं जो इसकी प्रोटेक्शन करेगा। जिसको जैसे हम बाहर का बात करते हैं कि लिम्फ नोड्स की, कि जितना जहां जहां आर्टरी है वहां वहां वेन है, जहां जहां वेन है वहां वहां लिम्फ नोड है, वहां वहां लिम्फ चैनल है, वहां वहां लिम्फ चैनल के साथ नर्व है, ये चारों चीजें एक दूसरे के साथ साथ चलती है। और इसका सबसे बड़ा हेड क्या है, सबसे पहले तो अलग अलग तरह जेल है जिसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं, उसका बड़ा बॉस कौन है, स्प्लीन है, तिली है जो हमारे लेफ्ट साइड में होती है, उसके बाद बहुत बड़ा बॉस कौन है, नहीं अभी नहीं बात करना है, उसके बाद जो तिली है, अगर मान लीजिए तिली से भी कोई चीज नहीं बीमारी हुई कैंसर हुआ, हम लोग देखते हैं कि लिम्फ नोड भूल गई है तो हम बोलते हैं अभी डाउटफुल है कुछ, हम टेस्ट करने शुरू करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि लिम्फ नोड तो बहुत शरीर में और भी फैल गए, उसके बाद हमने देखा कि ना तिली भी बढ़ रही है क्योंकि तो इनका बॉस है खून को साफ करने वाला, जो गार्बेज आ रहा है किसी बीमार अंग से, उस बीमार अंग से आने वाले इस गार्बेज को ठीक करने के लिए जो हमारे पास अंग दिया हुआ कुदरत ने, उसका नाम स्प्लीन है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि स्प्लीन का भी एक बॉस है जिसको हम थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, और थाइमस ग्लैंड हार्ट के ऊपर छाती के अंदर लगा होता है, और थाइमस ग्लैंड कुदरत का वो तोहफा है इस जीवन के लिए कि जब तुम्हें तेरे पास और कुछ नहीं था ना, उस वक्त ये थाइमस ग्लैंड तेरे पास प्रोटेक्शन करता है, जितना भी गार्बेज जितना भी कुछ ऐसा उस वक्त पैदा हो रहा था जो तेरे को नुकसान पहुंचा सकता था उसको सेट करने के लिए ये भी लिम्फोइड ऑर्गन। और ये जो ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड है ये भी तो भाई इसी मीडियास्टाइनम में ही है ना, ये भी हार्ट के ऊपर लगा हुआ है ना, तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अचंभा हुआ होगा के शरीर के अंदर रहते हुए भी तो गार्बेज बनता था ना, और उसी में रहता था, उसको न्यूट्रल करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या चीज थी? तो ये थायमस ग्लैंड उस वक्त इस शरीर की रक्षा कर रहा था कि भाई ठीक है तेरी रक्षा वहां पर जो करना करती है, हम भी तेरी रक्षा करेंगे ताकि तुम जिंदा रहे और बाहर आ जाए। और जैसे जैसे बच्चा बाहर आता है, बड़ा होना शुरू होता है ना, उसकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, थायमस ग्लैंड का काम कम हो जाता है और थायमस ग्लैंड छोटा हो जाता है। पहले बड़ा था, अब छोटा हो गया। बच्चा छोटा था, वो बड़ा हो रहा है, उसका थायमस ग्लैंड उसकी प्रोटेक्शन करने वाला। पहले माँ बाप रक्षा करते हैं ना, उंगली पकड़ के चलाते हैं, बच्चा जवान हो जाता है ना तो बोलता है ठीक है अब ये अपनी रक्षा आप करने योग्य, फिर माँ बाप पीछे हट जाते हैं। यही एक तरह माँ बाप का दर्जा रखने वाला हमारे पास उस वक्त थायमस ग्लैंड होता है भाई। ये भी इस मीडियास्टाइनम का ही हिस्सा है, और इसमें अगर कोई खराबी आएगी, और मान लिया जाए दिली से कुछ नहीं हुआ, ये पूरे शरीर में लिम्फ नोड हुडकिन डिजीज उसको बोलते हैं, बहुत से शरीर में इस तरह की गिल्टियां बन गई, बहुत कुछ ऐसा बन गया जो कोई और हल नहीं हो रहा, तो उस वक्त ये थायमस ग्लैंड भी फिर बड़ा होना शुरू हो जाता, थायमस ग्लैंड का काम भी बढ़ जाता है। नहीं भाई अब किसी से नहीं संभलता, अब लिम्फ नोड नहीं कंट्रोल कर पाते, अब तिली बेचारी नहीं कंट्रोल कर पाती, अब तुम सहाई हो भाई, अब तुम मेरी मदद करो, तो उस वक्त ये जो थायमस ग्लैंड है ये फिर बड़ा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ आज का समय मेरा समाप्त हो रहा है, अभी बहुत सी चीजें हैं मेरे पास कहने के लिए इस छाती के संबंध में, अगले प्रोग्राम में फिर हम इसका वेरवा आपके सामने कहेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग सुन रहे हैं कम से कम वो इंटरेस्ट लेकर सुने, रोजाना इन प्रोग्रामों को सुने, और अगर अच्छे लगे तो दूसरे अपने रिश्तेदार बहन भाइयों को बताएं, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं इस तरह ऐसे नहीं कि मैं मेडिकल कॉलेज में लेक्चर कर रहा हूं, मैंने कहा लेक्चर किया और बस चलता बन, नहीं, मेरा काम यह है कि जो भाषा आप समझते हैं, जो एग्जाम्पल्स आप समझते हैं, जो आपके रूटीन लाइफ के साथ संबंधित है, इस तरह की बातें मैं आपसे करूं जो आप आसानी से समझ पाए कि मैं क्या कह रहा हूं, बता तो शरीर के बारे में रहा हूं, लेकिन आप इसको इस तरह समझ जाएं जिस तरह आप अपने खेतों के बारे में जानते हैं, जिस तरह आप अपने जानवर और पशुओं के बारे में जानते हैं, इस शरीर के बारे में भी आप उस तरह जाने कि भाई हर चीज आपकी नजर में हो कि कैसे कैसे हो रही है। तो मैं गुरदीप सिंह संधु आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूं, 9701 सेरा एन कोर्ट डबलन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 4086871899। किसी भी वक्त किसी बीमारी के बारे में आप समझना चाहते हैं, सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं 4086871899। कंसल्ट करने की कोई फीस नहीं है, किसी भी दुनिया के कोने से आप मुझे कॉल कर सकते हो। अब तो व्हाट्सएप है, हर जगह ही है, कहीं से भी आप बिना पैसे के कॉल कर सकते हो, और अगर नहीं भी कॉल करना चाहते तो ईमेल है homeomedicine@yahoo.com। तो किसी भी वक्त ईमेल करके भी आप अपना सवाल मेरे पास भेज सकते हैं और उसका जवाब आपको मिलेगा। उस तरह ही मेरी बेस्ट जजमेंट जो 52 ईयर्स मेरा मेडिकल का प्रैक्टिस फील्ड हो गया, और इस समय पे पढ़ते पढ़ाते जो नॉलेज मैंने इकट्ठा किया मैं वो आप सब लोगों को दे जाना चाहता हूं। तो किसी को किसी जरूरत हो, अगर आप होम्योपैथिक तरीके से किसी बीमारी का इलाज ही करवाना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हो 4086871899। आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दवा करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही मेहरबानी, बहुत बड़ियां जानकारियां। दोस्तों ताड़ा भी धन्यवाद, चीमा साहब ताड़ा भी, मिलते हैं जी परसों नूं, फिर दियो इजाजत मेरे वल्लों। बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी।